चाहे। एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज, अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कम्प्लीट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई, नागरिकता भाई पुग्छ, हर एक घर को खुशी, घर घर में एलजी, एलजी लाइफ गुड।

0: फिर कभी मेरे प्यार पर शक मत करना।
1: फिर तुमने मेरे दिमाग में शक क्यों डाला? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन शक नहीं।
0: अगर तुम मुझे छोड़कर चले गई तो मैं पागल हो जाऊंगा, पागल।